नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सन 2026 जून महीने की 21 तारीख व दिन है रविवार। श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तुतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्रिकी सहायक श्री हेमंता सुर्यारी और श्री तनिंग तकु, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास, मनपा में उद्घोषक श्री कुंचो सांगे तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किसांग हामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूं।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: symbol of courage, bravery and valor. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रति वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Minhap 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या न...

0: होना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों

0: के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के घेरे में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लामा त्सरिंग दोर्जी और लामा दांगा से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

Yeah.

Jadon,

श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लामा त्सरिंग दोर्जी और लामा दांगा से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का

0: दबंग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद गालो आधुनिक गीतों का मार्तो कमदक की आवाज में। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अभी आप आनंद ले रहे थे चंद गालो आधुनिक गीतों का मार्तो कमदक की आवाज में। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे DKGC तवांग के थर्ड सेमेस्टर के छात्र कुमारी संग युटन से वृक्षरोपण का महत्व विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं संग युटन दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय में तीसरे सत्र की छात्र हूँ। आज मैं वृक्षारोपण की महत्व विषय पर अपना विचार प्रकट करना चाहूंगी। उस हरियाली की जो न केवल हमारी पर्यावरण की शान है बल्कि पृथ्वी के संतुलन की पहचान भी। प्रिय श्रोताओ, पेड़ पौधे केवल हरियाली ही नहीं देते, वे हमारे जीवन की आधार भी प्रदान करते हैं। वे हवा को स्वच्छ बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी को क्षरण से बचाते हैं और वर्षा के संतुलन को बनाए रखते हैं। वृक्ष हर मौसम में हमारे अनमोल साथी हैं। गर्मी में छाया बनकर, बरसात में सुरक्षित बनकर और हर पल जीवन सहायक बनकर। परंतु बढ़ती जनसंख्या शहरी के कारण पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। जहां कभी हरी भरी वन संख्या लहरती थी, वहां आज ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है। इस स्थिति की बदलना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक वर्ष में कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करे तो आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण देने का हमारा संकल्प पूर्ण हो सकता है। पेड़ केवल प्रकृति का उपहार नहीं, वे हमारी विरासत है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, धरती को हरा भरा बनाने का, पर्यावरण को हरा भरा बनाने का और वृक्षारोपण को अपनी दैनिक आदत बनाने का। क्योंकि जब पेड़ बचेगी तभी जीवन बचेगा। आकाशवाणी से यह प्रस्तुति आपको समर्पित थी।

0: एक स्वच्छ स्वस्थ और हरी भरी पृथ्वी के नाम। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। धन्यवाद
1: श्रोताओं। कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर के छात्र कुमारी संग यूटन से वृक्षारोपण महत्व पर उनका विचार। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं, जगदे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप सहानी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सलीम सुलेमान ने।

और आज फिल्म से आयवाना लेता है मोनाली ठाकुर के आवाज में यह गीत। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है सोहेल सेन ने।

लापता लेडीज फिल्म से आइए बाना लेते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत। प्रशांत पांडे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राम संपत्ति।

आयशा फिल्म से आइए बाना लेते हैं अमित त्रिवेदी, नकाश अजीज और ऐश किंग के युगल आवाजों में यह गीत। जावेद अख्तर साहब के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

आयशा फिल्म से आइया बाना लेते हैं अमित त्रिवेदी, नकाश अजीज और ऐश किंग के युगल आवाजों में यह गीत। जावेद अख्तर साहब के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए आनंद लेता है मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा बसीन की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है सोहेल सेन ने।

नेहा बसीन के गाये इस गीत के साथ ही नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त संध्या के 4 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युवावाणी। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कि चेंगा संस्कृत दल तवांग के सदस्यों के साथ समूह के गठन के उद्देश्य, अब तक की उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं पर

0: एक विशेष भेंट वार्ता इनके साथ भेंट करता है दुर्जी ड्रेमा। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम युवावाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा मासिक कार्यक्रम युवावाणी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ है आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में केचंगा कल्चरल ट्रूप के कुछ सदस्य। केचंगा कल्चरल ट्रूप जो हमारे तवांग के बहुत ही लोकप्रिय कल्चरल ट्रूप है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो आज के विशेष मेहमान हैं वे अपने परिचय आपको दें। सबसे पहले आप अपने नाम और आपने स्कूलिंग कहाँ से किया इस बारे में हमारे श्रोताओं को एक एक करके बताइए।
2: मेरा नाम लोपसांग सेदर है और मैं केचंगा बस्ती में रहता हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग है, जो प्राइमरी लेवल है, वो मैं टाउन सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया है। उसके बाद जो मेरा हायर सेकेंडरी लेवल जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया है।
1: जी, जी।
2: उसके बाद जो मेरा कॉलेज का जो है वो यही पे तवांग में दुर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज में किया है। और मैं ये केचंगा कल्चर ट्रूप का सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू
1: जी।
3: ताशी दिले, मेरा नाम तेंजिन देदुल है और मैं लव विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन सैनिक स्कूल गोलपरा असम से किया हुआ है और जो मेरा प्लस टू एजुकेशन है मैंने यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया है और अभी मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग में पढ़ता हूँ।
4: तशी दिलेक, मेरा नाम है नूरबू छोटन और मैं भी केचंगा में रहती हूँ और मैंने अपने स्कूलिंग गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल तवांग एंड गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तवांग से किए है। मैं अभी दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ।
5: ताशी दिले, मेरा नाम उर्गेन लामू है, दिल्ली गांव से हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग विवेकानंद केंद्र विद्यालय कितपी तवांग से किया और मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग से किया है।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये तो रही हमारे अतिथियों का परिचय। श्रोताओं, आज हम इनके साथ केचंगा कल्चरल ट्रूप से जुड़े हुए बहुत सारे चर्चा करेंगे और हर जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं लोपसांग सेदर जी से जानूंगी कि केचंगा कल्चरल ट्रूप की गठन कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या क्या है।
2: जी, केचंगा कल्चरल ट्रूप जो है 2014 में इसका गठन हुआ था। और इसका जो मेन एम जो था कि हमारा जो यहाँ पे जो जितना भी यूथ है अपना जो रिच कल्चर है उसको प्रिजर्व, उसके बाद इसको डीपली जानो, इसलिए कल्चर ट्रूप एक जिसमें हम लोग अपना जो डांस है, उसके बाद जो पहले का जो हमारा लोकल सॉन्ग होता था, तो इन सबके बारे में और जानकारी देने के लिए और जो हमारा जितना भी ऑडियंस है सभी को, मतलब हमारा जो केचंगा कल्चर ट्रूप है इनका जो आर्टिस्ट का जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए। तो केचंगा कल्चर ट्रूप जो गठन होने से पहले केचंगा वेलफेयर एसोसिएशन, एक हमारा जो केचंगा का एक एसोसिएशन है, तो उसमें जो है मैं असिस्टेंट कल्चर सेक्रेटरी मुझे दिया गया था। तो विद ड्यू डिस्कशन विद ऑल द मेंबर्स उन्होंने बोला कि हमारा जो रिच कल्चर है तो इनको थोड़ा डिस्प्ले करना चाहिए। तो इसको देखते हुए, क्योंकि हमारा जो चेयरमैन है तेंजिन लेंडुप सर, जिसको हम लोग पुंगु सर बोलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो ये कल्चर है बहुत रिच है, क्योंकि आजकल का जो जमाना में सब लोग अपना जो वेस्टर्न ड्रेस होता है या मॉडर्न ड्रेस होता है तो वो सबको लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो हमारा ट्रेडिशन है उसको जो जी तो उसको देखकर हमारा जो एसोसिएशन है, तो उन्होंने एक ऐसा डिस्कशन करके हमारा जो केचंगा कल्चर ट्रूप तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद जो मैं हमारे चेयरमैन सर तेंजिन लेंडुप सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो है यहाँ पे तवांग में कहीं भी जब कुछ प्रोग्राम होता है या फंक्शन होता है तो सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस एंड सॉन्ग्स हम लोग का अभी परफॉर्म कर पा रहे हैं।
1: जी, तो केचंगा कल्चरल ट्रूप को गठन हुए 10 साल हो चुके हैं ना, 10 साल से ज्यादा हो चुके। जी, तो मैं अगला सवाल रेदुल जी से करूंगी कि फिलहाल केचंगा कल्चरल ट्रूप में आप कितने सदस्य हो और आप जब भी कहीं भी परफॉर्म करते हो किसी भी कार्यक्रम में तो क्या हर सदस्य सक्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं।
3: जी, ऐसा देखा जाए तो अभी हमारे जो केचंगा कल्चरल ट्रूप है उसमें कुल मिलाकर हमारे 39 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सारे अभी यूथ ही हैं और कोई अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुके हैं या तो अभी अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जब भी हमारा ऐसा परफॉर्मेंस होता है या किसी प्रोग्राम पे हमें जब इनवाइट करते हैं हमारे अपने ट्रेडिशन को दर्शाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सब फ्री होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट और अपने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी अपने फर्दर स्कोप को अचीव करने में व्यस्त है। तो जो आर्टिस्ट फ्री होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को कहते हैं, बाकी से इतना फोर्सफुली नहीं है, जो हम फ्री होते हैं सिर्फ हम वही सभी परफॉर्म करते हैं।
1: जी, और मेरा अगला सवाल नूरबू छोटन जी आपके लिए है कि आप लोग जब किसी भी कार्यक्रम में परफॉर्म करते हैं तो उस समय किस तरह के परफॉर्मेंस

0: प्रदर्शन करते हैं और अपने परफॉर्मेंस के लिए किस तरह से फीस लेते हैं।
1: किचिंगा कल्चर ट्रूप है ना, ये जो हम लोग बाहर तरफ लेके जाएगा, लेकिन जो भी हम लोग नाचेगा, जो भी परफॉर्म देगा, वो हम लोग मुनपा खलकतंग तिरंग ये सब गाना में देते। और उस दिन लास्ट ईयर आपातानी का फेस्टिवल हो रहा था, तब हम लोग ने वो आपातानी खुद का कल्चर को वहां में शोकेस किया था। तो हम लोग ऐसे नहीं है कि लाइक हम लोग से मनपा कल्चर को हम लोग आगे बढ़ा रहे, हम लोग अपना पूरा अरुणाचल का कल्चर पूरा को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि हम लोग पूरा अरुणाचल एक ही पूरा यूथ एक ही जुट करके करते, तो इसलिए हम लोग अपना सब कल्चर को आगे बढ़ा के लेके जाते, लेकिन अपना मनपा कल्चर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के आगे बढ़ाते
0: जी। और फीस किस तरह से चार्ज करते हैं?
2: तो मेनली हमारा जो कहीं भी परफॉर्म होता है या कहीं पे फंक्शन होता है, तो उसमें हम लोग मेनली जो है अफोर्डेबल प्राइस, जैसे कि 10,000 to 15,000 हम लोग का फीस चार्ज करते हैं। क्योंकि एस यू ऑल नो कि हमारा जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो सब स्टूडेंट है, तो उनको भी अपना जो मेहनत का है तो उनको भी मतलब देने के लिए, तो हम लोग फिक्स प्राइस हम लोग इतना एक टू करते हैं।
0: जी जी। और जिस तरह से हमारे चर्चा हुए थे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश जो है संस्कृति और परम्परा से समृद्ध है, और यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होते हैं, विशेष रूप से हमारे तवांग जिला में, सरकारी हो या गैर सरकारी। और आप तो कलाकार हैं, आपको अच्छी तरह से पता होंगे कि किसी भी कार्यक्रम में गीत और नृत्य के बिना वो कार्यक्रम अधूरे ही रह जाते हैं। तो अगर किसी भी कार्यक्रम में आपको न्योता देना चाहे तो किस तरह से हम आपसे संपर्क करें?
2: जी, हमारा जो किचंगा कल्चर ट्रूप है, तो इनको मतलब इन्फॉर्म या कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारा जो फेसबुक में भी एक पेज है, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी पेज है किचंगा कल्चर ट्रूप करके, तो मेनली जो है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8974010703। तो इसमें कांटेक्ट करके आप हमारे जो डांस ग्रुप है तो उसको आप लोग इनवाइट कर सकते हो कहीं भी फंक्शन में।
0: जी, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कह दी कि किचंगा कल्चरल ट्रूप जो है हमारे तवांग के एक बहुत ही लोकप्रिय कल्चरल ट्रूप में से है, और आप हर बार जब भी हम देखते हैं आपके परफॉर्मेंस में कुछ न कुछ नए देखने को मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि आप 39 मेंबर्स फिलहाल किचंगा कल्चरल ट्रूप में है, तो अब तक किसी ने म्यूजिक कोर्स किए या नहीं? नेदल जी, आपसे जानना चाहूंगी।
3: जो हमारा ऐसा पार्टिकुलरली किसी ने कोर्स नहीं किया है ऐसे वोकल या कोई स्पेसिफिक चीज डांस या ऐसा जो होता है जो हमें कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा स्पेसिफिकली किसी ने किया नहीं है। बट हमें बीच में जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हमें हमारे एक्स एमएलए श्री सिंगटाशी जी ने हमें स्पॉन्सर किया था, तो वो जब हमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे तो हमें सिखाने के लिए जो मिपा से आर्टिस्ट थे, जो सीनियर आर्टिस्ट थे, वो आए थे हमें सिखाने को, और उन्होंने हमारा क्लास लिया था इन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो वो क्लास एक महीना से थोड़ा ज्यादा चला था, और ड्यू टू इलेक्शन वो बीच में उसको रोकना पड़ा। हमारा म्यूजिक का कोर्सेस है वो हमारा इतना ही।
0: जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि आपने हर बार बहुत ही सुंदर तरीके से डांस स्टेप्स, नए नए अपनी तरीके से क्रिएटिविटी दिखाते हुए बहुत ही सुंदर तरह से दर्शाते हैं, तो इसमें क्या आप सबके योगदान रहते हैं या फिर किसी एक के कोरियोग्राफी होते हैं? ये सवाल मैं उर्गेनला मुझे आपसे करना चाहूंगी।
4: इसमें एक ही व्यक्ति का योगदान नहीं होते, इसमें हम सभी जो जो मेंबर्स है, सदस्य है, वो सभी मिलके हम स्टेप्स निकलते हैं, डांस स्टेप्स, उसके बाद हम सभी डिस्कस करके उसके ऊपर में काम करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक वीक जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम जाके परफॉर्म करते हैं उसको।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखे हैं कि हमारे मनपा जनजाति के जो गीत एक समय पे बहुत ही मशहूर हुआ करता था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन आज ऐसे गीतों को लोग लगभग भूल ही चुके थे, तो ऐसे गीतों को आपने यानी किचंगा कल्चरल ट्रूप ने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हुए बहुत ही सुंदर डांस स्टेप्स से सजाते हुए लोगों के सामने फिर से दर्शाने लगे हैं। और छतर जी, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजाति है, और हर जनजाति के अगर हम पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें तो सभी के महंगा पड़ते हैं, और विशेष रूप से हमारे मोनपा जनजाति के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है बहुत ही महंगा पड़ता है। तो आप कहीं भी अगर जब भी परफॉर्म करते हैं तो आप हमारे पारंपरिक पोशाक में ही परफॉर्म करते हैं, तो उस समय उन सारे चीजों का प्रबंध कौन करते हैं?
2: जी, हमारा जो ये चेयरमैन है तेंजिन लेंडुप सर, तो वो अपना जो लेवल बेस्ट देते हैं कि हमारा जितना भी कॉस्ट्यूम हो तो वो अच्छा हो। उसके बाद अभी जो एक्स फॉर्मर एमएलए सिंगटेशी सर ने हमें बहुत कुछ कॉस्ट्यूम दिया है। उसके बाद जो हम लोग का जब भी कुछ ऑनरियम मिलता है तो उससे थोड़ा सा ऑनरियम जो है वो हम लोग रखते हैं अपने ड्रेस को रिपेयर, या कहीं पे कुछ अर्जेंट हमें आकर कुछ खरीदना होता है तो उससे हम लोग ले लेते हैं।
0: और मेरा अगला सवाल उर्गेनला मुझे

0: से है, तो आप सभी अभी बहुत ही कम उम्र के हैं, किसी ने हाल ही में अपने पढ़ाई पूरे की है, तो कोई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कल्चरल ट्रूप से जुड़ने से क्या लाभ आपको नजर आ रहा है, और इस ट्रूप में शामिल होते हुए आने वाले समय में क्या कार्य क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं?
1: जी, जैसे कि एक महान व्यक्ति ने कहा था कि पावर इज यूथ एंड यूथ इज यू। हम ऐसे विश्वास रखते हैं, हमें ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर यूथ ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे एक्टिविटीज में बिजी हो जाएंगे, इसलिए हमारे दिमाग जो मतलब कुछ गलत कामों में नहीं लगेगा, हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे ये सब काम से। जैसे कि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। सो हमें लगता है कि अगर हमारे दिमाग जो खाली रहेंगे और हम कुछ भी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे, हमारे दिमाग जो एक नेगेटिव कुछ सोचने लग जाएंगे और हमारे रास्ते भटक जाएंगे, इसलिए हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स और साथ में हमारे मन भी अच्छा लगेगा और ये फिजिकल हेल्थ और ये सब भी फिट रहेंगे।
0: और साथ साथ आपको हमारे मोनपा समाज से जुड़े हुए गीत और नृत्य के जानकारी तो आपको मिलेंगे ही, और साथ साथ सकारात्मक विचार से हमेशा जुड़े रखेंगे, है ना। और फिलहाल आप केचंगा कल्चरल ट्रूप में कुल 39 सदस्य है ना, और अगर कोई आपके जैसा यूथ आपसे जुड़ना चाहेंगे, केचंगा कल्चरल ट्रूप से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरह से होंगे, सिदर जी से जानेंगे फिर।
2: जी, हमारा जो केचंगा कल्चरल ट्रूप है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, दिल से हमारे साथ अगर जुड़ना चाहता है तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम इन आवर केचंगा कल्चरल ट्रूप। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और कोई ऐसे बैठा हुआ है फी नोस हाउ टू डांस और सिंग, हमारे साथ आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑडिशन या ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमारा जो जितना भी आर्टिस्ट है वो सब सभी यहाँ पे केचंगा कल्चरल ट्रूप में आकर उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे नाच के उसके बाद धीरे धीरे करके वो कुछ सीखता है।
0: जी जी, और वैसे आप सब बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और आपके कल्चरल ट्रूप बहुत ही, मैंने जैसे शुरुआत में कही थी कि बहुत ही लोकप्रिय है, हर कोई पसंद करते हैं, तो आप हमारे तवांग जिले से बाहर भी जाकर परफॉर्म करते होंगे। तो जैसा कि हमें देदल जी ने बताया कि हमारे तवांग के भूतपूर्व विधायक श्री संगठाशी जी ने आपको आर्थिक सहायता की थी, तो उनके अलावा अब तक आपको किसी और, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक है और आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट है और आर्मी अथॉरिटी है, या किसी से भी आपको अब तक आर्थिक किसी से सहायता मिले? क्योंकि आप जब तवांग जिले से बाहर परफॉर्म करने जाते हैं तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है।
3: अभी तक जो हमारे जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट हमें किया है वो हमारे एक्स MLA श्री सिंगटासी जी ने किया है, और उसके अलावा हमारे जो केचंगा वेलफेयर एसोसिएशन है उनके जो सीनियर जो रैंक होल्डर्स है उन्होंने हमें काफी सहायता किया है और काफी हमें जागरूक किया है और सपोर्ट किया है इस सब में। और हमें क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं पड़ा कि हमें उनके पास जाना पड़े, जब भी अगर हमें जरूरत पड़ता है तो हम जरूर से आशा करते हैं कि वो जरूर हमारे हेल्प करेंगे इन सभी चीजों में, जैसे कि हमारे फॉर्मर MLA ने हमें किया था। क्योंकि पहले जब केचंगा कल्चर ट्रूप फॉर्म हुआ था तब हम काफी छोटे थे, तो अभी इस केचंगा कल्चर ट्रूप को फॉर्म हुए 10 साल हो चुके हैं, तो मैं तो शायद केचंगा कल्चर ट्रूप का 8 बैच में हूँ, तो मुझे इतना खास नहीं पता इन सब के बारे में, जब जितना मैंने सुना है। लेकिन जब ये केचंगा कल्चर ट्रूप फॉर्म हुआ था तब हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे आपने कहा कि काफी एक्सपेंसिव होता है, इन्हें मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो ये सब हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है जैसे कि हमारे केचंगा कल्चर सेक्रेटरी मिस्टर लोपसांग सेदर, तो उन्होंने काफी कुछ झेला है। उसके बाद आज जो केचंगा कल्चर ट्रूप है इन लोगों की वजह से जो हमारे जो अभी हम ड्रेस पहनते हैं, अभी हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस आया है वो पूरा हमारे इन्हीं की बदौलत है, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाकर अपने ट्रेडिशन को प्रमोट कर और जहां जहां में हमें ऑनेरियम मिलते हैं उनमें से थोड़ा सा भाग रखकर और बाकी बांट कर, तो वही ऑनेरियम से हम अपने ड्रेस लेते हैं और उसमें मेंटेनेंस होता है, तो इसी में हमारा हो जाता है, तो हमें इतना जरूरत नहीं पड़ा कि किसी के सामने जाकर रिक्वेस्ट या अप्रोच करना पड़े। अगर इन फ्यूचर हमें पड़ता है तो हम जरूर से आशा करते हैं कि वो हमारा हेल्प करेंगे जैसे हमारे फॉर्मर XMLA मिस्टर सिंगटासी जी ने किया था। थैंक यू।
0: तो लगभग अब तक सारे चीजों का जो मैनेज आप अपने आप ही करते हो, यानी केचंगा कल्चरल ट्रूप अपने आप ही करते हो ना। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अगला सवाल फिर सेदर जी से करूंगी कि आपने अब तक बताया कि हमारे अब तक के चर्चे में गीत और नृत्य के परफॉर्मेंस से जुड़े हुए ही हुए थे, तो इसके अलावा आप 39 मेंबर कुल केचंगा कल्चरल ट्रूप में फिलहाल है।

0: इसके अलावा समाज से जुड़े हुए कुछ अन्य गतिविधियां आपने किए हैं?
1: जी, डांस के अलावा हमारे जो केचिंगा कल्चर ट्रिप है तो वो सोशली बहुत एक्टिव रहता है, और हमारा जो केचिंगा जो कॉलोनी है तो उसको कभी कभी जब सोशल सर्विस करना होता है तो उसमें हमारा जो आर्टिस्ट है बहुत अच्छा से भाग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी तवांग जो है टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो हमारा जो आर्टिस्ट है वो जो यहाँ पे अभी जो हमारा बुद्धा स्टेचू आई लव तवांग करके है, तो उसमें हमारा जो लोकल ड्रेस होता है वो टूरिस्ट लोगों के लिए उसको पहन के उसके साथ फोटो खिंचवा के ऐसे करके हम लोग भी प्रमोशन करते हैं अपना जो कल्चर है। तो का जो फीस भी है वो एकदम एफोर्डेबल है, 100 करके हम लोग करते हैं। अपना जो केचिंगा कल्चर ट्रिप के आर्टिस्ट हैं वो सबको मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो सोशल एक्टिविटीज और हम लोग आगे बढ़ाकर, क्योंकि हमारा जो अभी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं उसके बाद जो हमारा यहाँ का जो लीडर सीनियर मंक्स है तो उनसे एडवाइस लेकर हम अपना जो तवांग है उसमें सोशल सर्विस भी कुछ करना चाहेंगे। के बाद जो हमारा जो यहाँ पे तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी हमारा जो आर्टिस्ट है उन्होंने भी अपना जो ब्लड है डोनेशन किया है, तो उसके लिए भी मैं अपना जो आर्टिस्ट है उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा।
0: जी, और मुझे तो आप लोगों से बातें करते हुए बड़े ही आनंद आ रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ हमारे बहुत सारे श्रोताएं जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है तो वे शायद थक गए होंगे, तो क्यों ना हम आपके पसंद के गीत मिलकर सुनते हैं, है ना? तो आप अपने पसंद के गीत की फरमाइश कर सकते हैं।
1: तो हम सबका फरमाइश है कि हमारा जो अरुणाचल का जो सॉन्ग है अरुण किरण शीश भूषण, तो उसको हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए एक बार प्ले कर दीजिएगा।
0: जी।

0: फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये है देदुल जी, अभी तक आपके केचिंग कल्चरल ट्रूप ने जितने भी परफॉर्मेंस कार्यक्रमों में परफॉर्म किए हैं वे सारे शायद तवांग में ही किए होंगे, तो तवांग से बाहर जाकर आपने किसी जगह पर परफॉर्म किए हैं या फिर आने वाले समय में करने की योजनाएं हैं?
1: जी जी, हमने हमारे जो कल्चर जो परफॉर्मेंस है वो तवांग से बाहर भी किए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी किए, जैसे इंडिजिनियस

0: इस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी जो उनका सिल्वर जुबली हुआ था जो ईटानगर में हुआ था, तो उसमें हमने भाग लिया था जो हमें काफ़ी अच्छा लगा और उसमें हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। और उससे पहले हमने वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी परफॉर्मेंस दिया था, जब उस नए मोनेस्ट्री की जो प्रेयर हॉल का जो इनोग्रेशन था तब हमें वहाँ में काफ़ी जानकारी मिली थे। उसके बाद हमने वहाँ में इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्री से आर्टिस्ट आए थे, जो हमारे नेबर कंट्री है भूटान से जो आर्टिस्ट आए थे, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ, तो इससे हमारा काफी जो नॉलेज है उस हमें मिला है उससे। और आगे जो हमारा प्लानिंग है, हमें शायद टूटिंग में एक प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया गया है, तो उसके लिए भी हम अभी देख रहे हैं।
1: जी, फिर मैं अगला सवाल उर्यन लामुजी आपके तरफ आ रही हूँ। और आप एक युवा कलाकार है, तो आपके जैसा हमारे समाज में और भी बहुत सारे युवा होंगे जिनके पढ़ाई जो है पूरे हो गई है, लेकिन उनके पास फिलहाल करने को कुछ नहीं रहता है। और आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि खाली दिमाग शैतान का घर, शायद उनके साथ ऐसा होते होंगे कि उनके पास करने को कुछ नहीं रहता है तो वो कुछ न कुछ गलत सोचते होंगे या फिर गलत रास्ते अपना लेते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होंगे कि हमारे समाज में जो युवा है उनके बीच नशीले पदार्थों का सेवन करना जो है बहुत ही आम सी बन चुकी है, विशेष रूप से, और कुछ लोग जो है हद से ज्यादा शराब का सेवन करते हैं या फिर कोई गैम्बलिंग के तरफ चले जाते हैं, तो उनको आप संदेश दीजिए।
2: सो मैं युवाओं को बोलना चाहूंगी कि अगर आपका पास कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसे यूटिलाइज करना जानना चाहिए। आपको मतलब नशीले चीज और ये ड्रग्स ये सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नशीली चीज भी बहुत खराब होते हैं, उनको लत लग जाते हैं, तो इसलिए हमें ये सब से दूर रहना चाहिए। और हमें ऐसे अपना समय को व्यक्त करना चाहिए जिसमें हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दे और हमें कुछ उससे सीख मिले। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप नशीले चीजों से दूर रहिए और ऐसे कुछ अच्छा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए जिससे आपको अच्छा नॉलेज गेन हो और आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब दे।
1: क्योंकि हमारे समाज में फिलहाल ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, विशेष रूप से लोग ड्रग्स का सेवन बहुत करते हैं, तो उस दौरान उनकी जो जिंदगी है खराब होने की तरफ चलते हैं।
0: तो जैसा हमारे उर्यन लामू ने बताया, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो ड्रग्स है वो एक कैंसर डिजीज की तरह है जो क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई कोई तो उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, तो अल्टीमेटली वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। तो ड्रग्स अब्यूज भी इसी तरह ही एक कैंसर डिजीज की तरह है जिसे क्योर करना काफी मुश्किल है। अगर एक बार यूथ को इसका लत लग जाए तो काफी मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना, और जिसके कारण जो उनकी जो फैमिली बर्डन होता है तो फैमिली पर भी काफी इफेक्ट होता है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें भी इफेक्ट होता है, उनके जो पीस जो फैमिली पीस होता है उस पर भी इफेक्ट होता है। तो अगर हमारे जो फैमिली के सदस्यों में कोई भी ऐसा एक होता है जो ड्रग्स लेते हैं तो उससे काफी हमारे फैमिली पे इफेक्ट होता है। तो अगर हम इन कल्चर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करें तो हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है, और जिससे हमें हमारे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, अपॉर्चुनिटीज, हमारे कॉन्फिडेंस, वो सब में जो बढ़ोतरी होते हैं, तो उन सभी की वजह से हमें इस खराब लत पे हम नहीं चलते जिसके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे तवांग में जो नए यूथ है, ना सिर्फ तवांग ही नहीं, पूरे अरुणाचल, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जो यूथ है, मैं इन सभी से यही कामना करना चाहूंगा कि वो अपने आप को किसी अच्छे चीज पे ही फोकस रखे, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज होते, पढ़ाई है इम्पोर्टेंट है, हमारे जो एजुकेशन है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, पर उससे हटकर हमें एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम इन जैसे ड्रग एब्यूज, एल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, इन सभी चीजों पे हमारा ध्यान ना जाए और हम अपने आप को दुरुस्त रख सके और अपने फैमिली पर बर्डन ना बने और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। थैंक यू
1: जी। क्योंकि आप अगर हमारे आकाशवाणी तवांग को सुन पाते हो तो आपने शायद सुने होंगे कि इस बारे में, यानी ड्रग अवेयरनेस को लेकर, हमने आज से पहले भी कई बार कई लोगों के साथ चर्चा किए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, पुलिस पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, एनजीओ के साथ, बहुत सारे इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो हमें लगता है क्योंकि हम जितना हो सके इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक जाते रहे ना। अब मैं सिदर जी से जानूंगी कि आपके केचंगा कल्चरल ट्रूप के अब तक के जो आपने गतिविधियां किए हैं परफॉर्मेंस के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताए हैं, लेकिन जो अभी आने वाले समय में केचंगा कल्चरल ट्रूप और क्या क्या अच्छे अच्छे चीजें करने वाले हैं?
3: तो हमारा जो केचंगा कल्चर ट्रूप है तो उसका जो फर्दर प्लानिंग्स बहुत है, जैसे कि हमारा जो अभी अरुणाचल में जितना भी टाइप है जैसे कि निशी, गालो आदि, आपतानी, तो इनका भी जो ड्रेस है

0: तो वो सब का भी हम लोग प्लानिंग करके यहाँ पे जो हमारा किचन कल्चर ट्रूप है वो होल अरुणाचल को प्रमोट करना चाहेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ मोनपा कम्युनिटी को ही हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हमारा जो अरुणाचल का जो ट्राइब है उसको भी हम लोग आगे बरकरार रखेंगे, क्योंकि एस हमारा जो तवांग है बहुत अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, तो हमारा जो अरुणाचल का जितना भी लोग यहाँ पे तवांग में घूमने आते हैं तो उनको भी मतलब हम जो अपना अगर जैसे कि कोई अपतानी ट्राइब से कोई यहाँ पे आया है तो हम लोग अपना जो अपतानी अगर डांस कल्चरल हम लोग उनको दिखाएंगे तो उनको भी लगेगा कि दे आर एट होम, इसलिए हम लोग का ऐसे हम लोग प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद और हमारा जो जितना भी हमें अभी स्टूडेंट है या कोई ऐसे ही बैठा है अनएम्प्लॉयमेंट बैठा है तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे किचन कल्चर ट्रूप में ज्वाइन करें, यू आर मोस्ट वेलकम, कि आप लोग यहाँ पे आके अपना जो थोड़ा पॉकेट मनी है उसके बाद जो अपना जो माइंड है उसको बिजी रख के, अपना जो शेड्यूल है उसको बिजी रख के हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी जो समय ऐसा आ गया है कि जो नौकरी है ये सब भी थोड़ा मुश्किल है, तो जो जो यहाँ पे बैठा है कोई कोई यहाँ पे मतलब बस्ती से तवांग में रेंट में बैठा हुआ है तो उनको भी थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगा, तो ऐसा आशा करता हूँ कि मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स विल बी जॉइनिंग अस इन आवर किचन कल्चर ट्रूप।
1: जो युवा उनके पास अभी लीजर टाइम है, कुछ करने को नहीं है, तो आपसे अगर जुड़ सकते हो तो उनके जो अंदर टैलेंट है उसे उपयोग में लाने का अवसर भी उसको मिलेंगे और साथ साथ रोजगार भी मिलेंगे। सबसे खास बात जो हमारे जो कल्चर से जुड़े हैं, गीत है, नृत्य है और पोशाक के बारे में बहुत सारे जानकारी प्राप्त करने को मिलेंगे, है ना।
0: तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टाकू सर है, टोका चेयरमैन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का टूरिज्म ऑफिसर टिप्रो सर, उसके बाद जितने अन्य लीडर जो हमारे तवांग के हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो केचेंगा कल्चर ट्रूप है तो उनको और बढ़ावा दे और कहीं भी जब भी फंक्शन हो तो हमें उसमें अपॉर्चुनिटी दे, ताकि हमारा जितना भी यहाँ का तवांग का यूथ है तो वो भी हमारे साथ बने रहेंगे और जो हमारा रिच कल्चर है उसको शोकेस करते रहेंगे। और हमारा जो ऑनरेबल MLAs है, उसके बाद ZPC एंड ZPMs सर मैडम, सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम यूथ को और इनकरेज करें और जितना हो सके इनकरेज करें, ताकि हम लोग जो अपना कल्चर है उसको शोकेस करके पूरा जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, सभी में हम लोग अपना जो मोनपा कल्चर है उसको हम लोग शोकेस कर सके।
1: जी जी, तो हमें हमारे आज की यह चर्चा यहीं पर समाप्त करने होंगे क्योंकि इस कार्यक्रम में समय की पाबंदी है। तो आज आप सभी ने आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने समय निकालकर आए और हमारे श्रोताओं को किचेंगा कल्चरल ट्रूप से जुड़े हुए बहुत सारे जानकारियां दी। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू,
2: धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम युवावाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केचेंगा सांस्कृतिक दल तवांग के सदस्यों के साथ समूह के गठन के उद्देश्य, अब तक के प्रदर्शन एवं उपलब्धियों तथा भविष्य के योजनाओं पर एक विशेष वार्ता। इनके साथ वार्ताकार थे दुर्जी ड्रेमा। श्रोताओं, तो इसके साथ ही हमारा मासिक कार्यक्रम युवावाणी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से राग। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

你在这干的。

श्रोताओं, कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से राग। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र रहा है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्ण परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कालीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जल मरुमध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों के लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने टोरंटो कनाडा में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती साहस और वीरता की प्रतीक थी और उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहेगी। राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदायों, वंचित वर्गों और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षक के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। राष्ट्रपति मुर्मू कल कूना राष्ट्रीय उद्यान का दौरा भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से योग को नियमित जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बियूराम वाघे के साथ आज ईटानगर के लोक भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी जीरो ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित किया था। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सदियों पुरानी सभ्यतागत समझ को वैश्विक स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योग, जो कभी प्राचीन भारतीय परंपराओं का हिस्सा था, आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है और इसे संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में पहचाना जाता है। योग को मानवता के लिए भारत की सबसे बड़ी देन बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि तनाव, चिंता, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और निष्क्रिय आदतों के द्वारा

से योग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक सरल, किफायती और टिकाऊ तरीका प्रदान करता है। संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने की अपनी निरंतर कोशिशों के तहत राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच अपनी पुस्तक का योग फॉर कॉमन हेल्थ चैलेंजेस की प्रतियां बांटी। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारत के उच्च योग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावर्तन करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया। इन पोतों का उद्देश्य युद्ध अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है।

संशोधक और अग्रय का जलवर्तन करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया। इन पोतों का उद्देश्य युद्ध अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। आईएनएस दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। आईएनएस संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस अग्रय तटीय रक्षा के लिए टोरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की भागीदारी रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका हुर्मुज जल मरुमध्यक पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाप 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पूर्ण परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों पर, विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवत तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। यह घटना उस समय घटी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में एकत्रित थे। घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और मलबे से 20 से 25 लोगों को निकाला गया। लगभग 15 घायल श्रद्धालुओं का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हुर्मुज जल मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,00,000 मैट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर है देश भेवब, देश बिभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपनी नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। रूस के साइबेरिया के एक शहर में महीनों से बिना आरोप हिरासत में रखे गए 24 फिलीपींस नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। ये सभी आज मनीला पहुंच गए, जहां उनका स्वागत फिलीपींस के विदेश मंत्री थेरेसा लाजोरो ने किया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। दोनों नेताओं की मुलाकात कजान में आसियान रूस संबंधों की 35वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में हम आपको अवगत करवाएंगे हमारे केंद्र के आज एवं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम जेदुनलरी में आप सुनेंगे मीपा तवांग के श्री पेमाताशी और 10 सदस्यों से जुनचक सुम्पा कैप्ट्रो समगे गंगलोमा ड्रोइमा ग्यावे रिनपोचे सेंगा तोयपा ग्यावे शब्तन शेरप निंगमो सेमे योंतन बर्चे लमसल और गोवा मुनलम। आज शाम 7 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिले कवाली, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे फिल्म वीर जारा से अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में, कच्चे दागे फिल्म से नुसरत फतेह अली खान की आवाज में और इंडियन बाबू फिल्म से सबरी ब्रदर्स और जसपेंद्र नरूला की आवाजों में चंद कवालियां। आज शाम 7:25 पर कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के लिखे संस्कृत भाषा में एक गीत का पाठ। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे खेले हम जी जान फिल्म से सोहेल सेन और अन्य गायकों से एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8 फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 22 जून 2026 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर के 2:00 मीडिया न्यूज के साथ, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे मनहार उदास की आवाज में चंद हिंदी देव गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद बुगुन गीतों का संज्ञा मर्फ्यू और साथियों की आवाजों में। कल दोपहर 3:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के 5वें सत्र के छात्र कुमारी संगपा लामू से समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर उनका विचार। कल दोपहर 3:33 पर नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत, इसमें पहला गीत आप सुनेंगे हीना 1991 फिल्म से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसूजा और सुजैन डीमेलो की आवाजों में, लेडीज वर्सेस रिकी भाल फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में, वीर जारा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में और टाइगर जिंदा है फिल्म से ज्योति नुरान की आवाज में चंद हिंदी फिल्में गीत। कल दोपहर 3:50 पर हिंदी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसमें आप आनंद लेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बने दयाल, नाजिया हसन, सुनीति चौहान और विशाल दत्तानी की आवाजों में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से सनमपुरी और नीति मोहन की आवाजों में, टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपति

ता की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म से बनी दयाल और शेफाली अलवरस के आवाजों में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में फने खान फिल्म से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाजों में जवानी जाने मन फिल्म से यसीर देसाई की आवाज में दे दे प्यार दे फिल्म से सुनिधि चौहान और नवराज हंस की आवाजों में और ट्यूबलाइट फिल्म से अदीब असलम की आवाज में चंद हिंदी फिल्म गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान से शहनाई वादन। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 मनपा कार्यक्रम दमदर लड़ीम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में, 5:35 पर मनपा कार्यक्रम त्रैतन लपचा, शाम 6 लड़ीम सरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरूखा। कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदुंदेरिम, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गेलोंग जम्बा वांगचू और साथियों से जुर्वा चुद्रुक। कल शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण, 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत। इनमें पहला गीत आप सुनेंगे रेफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में और अंतिम गीत का आप आनंद ले पाएंगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल आवाजों में। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में आप सुनेंगे खेले हम जी जान फिल्म से सुहेल सेन की आवाज में एक देशभक्ति गीत। कल रात्रि 8 फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मनपा में, कृपया हमारे साथ बने रहें।

उच आकाशवाणी तवाइम्बर लाइन सामु नुप्तिक छुजे ग्रोखनिंग कर्म खेलियोनी लाइन दा देशिक शेदन लेरिम चित को चुदुर लाइन दिशुद लेरिमा

시어서서 지다라타 바잠제네 하남제네 트서라타 세 주네다바예 대제다게고 트서 사제베제 주셴

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित

0: किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Talks between the US and Iran aimed at strengthening the fragile interim agreement and advancing efforts to end the West Asia conflict began in Switzerland's Bergenstock today. US Vice President J.D. Vance is leading the US delegation, while Iranian delegation is led by Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Qatar and Pakistan are mediating the talks. The meeting comes after Tehran closed the Strait of Hormuz again over Israel's continued attacks on Lebanon. However, the U.S. military said the waterway remains open to all vessels. Tehran and Washington are said to participate in the quadrilateral talks late in the day with representatives of Qatar and Pakistan. Ahead of the four-party talks, the U.S. delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, held a meeting with Pakistani mediating team.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिले कवाली। इनमें पहला कवाली का ये आनंद लेता है वीर जारा फिल्म से अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की युगल आवाजों में। इस कवाली को लिखा है जावेद अख्तर ने तथा संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली कवाली आइए आनंद लेते हैं कच्चे धागे फिल्म से नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में। इस कवाली को लिखा एवं संगीत से संवारा है आनंद बख्शी ने।

0: कच्चे धागे फिल्म के इसी कवालियों के साथ ही कार्यक्रम महफिले कवाली अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय संध्या के 7:25 हुए हैं। अब पेश है समुदाय गीत एवं गीत पाठ। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर हरिराम आचार्य जी से संस्कृत भाषा में एक गीत का पाठ। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ।
1: बच्चों, आज हम आपको संस्कृत में एक सरस्वती वंदना सिखाएंगे। आप लोग सीखेंगे ना?
2: Yes, sir.
1: अच्छा बच्चों, हमारे साथ नलिनी जी भी आपको सिखाएंगे। और ये संस्कृत वंदना आपको मालूम है किसने लिखी है? डॉक्टर हरिराम आचार्य ने। और ये वंदना राग बसंत पर आधारित है और इसका संगीत मैंने ही बनाया है।

0: बच्चों आप नाम जानते हैं इनका? श्री सतीश भाटिया जी।
1: अच्छा बच्चों, अब कागज पेंसिल निकालो और पहले गाना लिख लो। जय जय हे,
2: जय जय हे,
1: भगवती
2: भगवती।
1: हाँ, ता में छोटी की मात्रा, भगवती सुर भारती।
2: सुर भारती,
1: भारती नहीं भारती, ता में छोटी की मात्रा। तव चरणों,
2: तव चरणों
1: प्रणमामः,
2: प्रणमामः।
1: माँ के आगे दो बिंदी लगाना है। आगे लिखिए नाद ब्रह्म मई,
2: नाद ब्रह्म मई।
1: जय वागेश्वरी,
2: जय वागेश्वरी।
1: शरणम,
2: शरणम
1: ते,
2: ते
1: गच्छामः,
2: गच्छामः।
1: सबने लिखा?
2: यस सर।
1: अच्छा बच्चों, ये तो आपकी हो गई स्थाई। अब लिखिए पहला अंतरा। त्वमसि,
2: त्वमसि
1: शरण्या,
2: शरण्या
1: त्रिभुवन धन्या,
2: धन्या
1: सुर मुनि,
2: सुर मुनि
1: वंदित,
2: वंदित
1: चरणा,
2: चरणा।
1: आगे लिखिए नव रस मधुरा,
2: नव रस मधुरा।
1: कविता मुखरा,
2: कविता मुखरा।
1: स्मित रुचि,
2: स्मित रुचि।
1: रुचिरा भरना,
2: रुचिरा भरना।
1: इसके बाद पहली लाइन आ जाएगी जय जय हे। तो ये आपका पहला अंतरा पूरा हो गया। अब दूसरा अंतरा लिखिए आसीना भव,
2: आसीना भव।
1: मानस हंसे,
2: मानस हंसे।
1: कुंद तुहिन,
2: कुंद तुहिन।
1: शशि धवले,
2: शशि धवले।
1: आगे लिखिए हर जल ताम,
2: हर जल ताम।
1: कुरु बोधि विकासम,
2: कुरु बोधि विकासम।
1: विकासम नहीं विकासम, वाह है विकासम। सित पंकज,
2: सित पंकज।
1: तनु विमले,
2: तनु विमले।
1: दूसरा अंतरा भी पूरा हो गया, एक और है। अब तीसरा अंतरा लिखिए ललित कलामयी,
2: ललित कलामयी।
1: हाँ, या में छोटी की मात्रा है। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी,
2: ज्ञान विभामयी।
1: हाँ, मयी छोटी की मात्रा। वीणा पुस्तक धारिणी,
2: वीणा पुस्तक धारिणी।
1: हाँ, अला में छोटी की मात्रा। मतिरास्ताम,
2: मतिरास्ताम।
1: नो तव पद कमले,
2: नो तव पद कमले।
1: आई कुंठा,
2: आई कुंठा।
1: विष,
2: विष
1: हारिणी,
2: हारिणी।
1: इसके बाद फिर पहली लाइन आ जाएगी जय जय हे। तो ये बच्चों सबने लिख लिया गाना?
2: यस सर।
1: अच्छा, गाना तो पूरा हो गया। अब

0: इसको हमने कहरवे में बनाया है। कहरवे में चार मात्रा होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं?
1: चार।
0: और ताल का नाम क्या है?
1: कहरवा।
0: आप तबले में सुनिए, एक दो तीन चार, बोलिए एक दो तीन चार। बिल्कुल ठीक है। अब इसकी तबले के साथ हम सिर्फ इसकी लय बात देखेंगे कि कैसे लय में आता है। हाँ, जय जय हे भगवती सुर भारती,
1: जय जय हे भगवती सुर भारती।
0: तव चरणों, अब तव जो है वो आधी मात्रा छोड़ के है, मात्रा छोड़ के है। देखिए, वन टू थ्री फोर, तव चरणों प्रणमामः। एक दो एक, तव चरणों
1: प्रणमामः।
0: समझ में आया? आधी मात्रा छोड़ के है तव चरणों। आगे चलें, एक बार फिर बोलिए इसको, जय जय हे।

0: नहीं, इसके बाद फिर पहली लाइन आ जाएगी। तो बच्चों गाना तो तुमने लिख लिया और लय की बोल बांट भी आपने देखी, अब इसको स्वर में सीखिए। ये गाना बच्चों नलिनी जी बताइए कौन से स्वर से है?
1: काली पांच से।
0: काली पांच से यानी पांचवें काले से। आप बाजे में स्वर देखिए, पांचवा काला।

अच्छा, अब गाने के पहले जय जय जय बोलना है, हम आपको बताते हैं। वो उसमें तबला नहीं है, लय है, लेकिन तबला नहीं है।

ランバー。ये तो तबले के बगैर है। अब गाना शुरू होता है।

0: दो एक
1: तव चरणौ प्रणमामः।
0: जैसे लय में आपने सीखा था ना, आधी मात्रा के बाद आएंगी लाइनें इसमें। आप तबले के साथ देखिए।

खेले हम जी जान फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आइए इन नगमों का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है दतारेंगा भट्टापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, परस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेला वर्मा जी की ओर से। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है मन की आंखें फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। इस गीत के गीत रचयिता है साहिर लुधियानवी तथा संगीत संयोजन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मद भर समापन धुला धुला हर कली सुख पल यहाँ।

तिला दिल्ली के कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा जी की ओर से, और साथ ही सतना मध्य प्रदेश के उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी की ओर से। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है मर्यादा फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है मुकेश ने। इस गीत की गीत रचयिता है आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है कल्याण जी आनंद जी।

पंजाब के गगनदीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रियम ठंडी, बेबी वामिका और वानी ठंडी जी की ओर से आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है बैराग 1976 फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इस गीत के गीत रचयिता हैं आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है आनंद जी कल्याण जी।

श्रोताओं, इस वक्त दोबारा ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है टोरोवाल नवन शर्मा।

श्रोताओं, अभी यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रिगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी की ओर से, और साथ ही मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बालवीर सिंह जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कूली फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है शब्बीर कुमार ने। इस गीत के गीत रचयिता है आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जनकपुरी सहारनपुर के जॉन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो जी की ओर से, और साथ ही मलवा रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन हिंगरी गांव रतलम मध्य प्रदेश के जगदीश ढाकर नाइमा, रंजू भाई ढाकर, युवराज सिंह ढाकर, शिवांगी ढाकर जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कूली नंबर वन फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। इस गीत के गीत रचिता है समीर तथा संगीत संयोजन है आनंद मिलन।

जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार लगे। अगर आप भी इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम

इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगों के साथ। ये आकाशवाणी का दीवाना गीत है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 9 रात्रि 9:00।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। भारत ने त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अपने नाम की। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर गरजा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। अन्य मुकाबलों में जर्मनी और जापान ने जीत दर्ज की। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उस्ती नाद लाबिम ग्रांपी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने कुल 12 पदक जीते और अभय वेलावन ने लगातार तीसरी बार एशियन डबल स्क्वैश खिताब पर कब्जा किया।

तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं योग दिवस से, जहां कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में

0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योग किया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्रों में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। ऋचा घोष 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ अरुंधति रेड्डी दे रही हैं। भारत ने इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। प्रतियोगिता में भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से, वहीं दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया था। और अब रुख कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच हुए त्रिकोणीय श्रृंखला पर। दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का फाइनल मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 66 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित ओवर में 377 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में धमाकेदार 94 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रन बनाए। वैभव ने अपना अर्धशतक सिर्फ 11 गेंदों में पूरा किया। इस तूफानी पारी के साथ ही वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
4: जब मैच बड़े होते हैं तब वैभव खड़े होते हैं और ये लंबा मारा है एक और छक्का, और इसी छक्के के साथ केवल 11 गेंदों में सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक पूरा किया है वैभव सूर्यवंशी ने।
0: अनुकूल रॉय ने भी 39 रन की अहम पारी खेली। 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 48वें ओवर में 311 रन पर सिमट गई। यश ठाकुर और विपराज निगम ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और उधर बीसीसीआई ने आज इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय सीनियर टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज इंग्लैंड के साथ होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई को इंग्लैंड के एजबेस्टन में खेला जाएगा। कर लेते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच के मुकाबले में आज स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप जी के मैच में बेल्जियम का सामना ईरान से होगा। अन्य मुकाबलों में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को और नीदरलैंड्स ने स्वीडन को हराया। सुनते हैं इन मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
5: फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ के मुकाबले में जापान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनिशिया को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। विश्व कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब जापान ने एक मैच में 4 गोल किए। इस हार के साथ ही ट्यूनिशिया का टूर्नामेंट में

0: सफर समाप्त हो गया है। इस जीत के साथ ही जापान ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपनी दावेदारी और पुख्ता कर ली है। जापान की ये जीत वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी AFC टीम की सबसे बड़ी जीत भी है। जापान की बड़ी जीत की शुरुआत अयासे उएदा ने की। उन्होंने ऊंची छलांग लगाते हुए ट्यूनिशिया के डिफेंडरों के ऊपर से बेहतरीन हेडर लगाया और गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए जापान को 1-0 की बढ़त दिलाई। दाइची कामदा ने खिलाड़ियों को छकाते हुए जापान की बढ़त को दोगुना कर दिया। कामदा का 4th मिनट में किया गया गोल फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी जापानी खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे तेज गोल है। दूसरे हाफ के 69वें मिनट में जुनिया इतो ने शानदार स्लाइड लगाते हुए जापान की टीम की ओर से तीसरा गोल किया। मैच के 83वें मिनट में उएदा ने अपना दूसरा और मैच का 4th गोल करते हुए जापान की आसान जीत पर मोहर लगा दी।
1: Ahead of him, around him, goes for goal himself! And what a strike that is! Back over the top, and it's Junior Ito who's driving forward. Surely it has to be! 3 for Japan! Tunisia 0, Japan 4.
0: ग्रुप ई के मुकाबले में जर्मनी ने शानदार वापसी करते हुए कोटे डी आइवर को 2-1 से हराया। टीम की इस जीत के हीरो डेनिस उंदाव रहे, जिन्होंने 2 गोल दागे। इस रोमांचक जीत के साथ ही जर्मनी ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये मुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद रोमांचक रहा। मुकाबले में कोटे डी आइवर ने गोल करके 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर डेनिस उंदाव ने 2 गोल करते हुए मैच का पासा पलट दिया। 8 मिनट के भीतर उंदाव ने पहला गोल दागते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी स्टॉपेज टाइम में जर्मनी के लिए उंदाव ने निर्णायक गोल किया। उंदाव के लिए ये प्रदर्शन खास रहा, क्योंकि जर्मनी के लिए उनके पिछले 8 मैचों में ये 9वां गोल रहा।
2: It's going in! Frank Kessier! The group E picture changes with one touch of the ball! Ball in towards Havertz! And Undav! There's the response that you'd expect from a side of this stature. After dismantling Curaçao, they dug in against Cote d'Ivoire.
0: ग्रुप एफ के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 5-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है। नीदरलैंड्स ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपने दावेदारी और मजबूत कर ली है। नीदरलैंड्स की ओर से इस मुकाबले में ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो दोनों ने 2-2 गोल किए। मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स आक्रामक अंदाज में खेलता नजर आया। टीम ने 5वें मिनट में ही पहला गोल कर बढ़त बना ली। इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने नीदरलैंड्स की बढ़त को 2 गुना कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। 47वें मिनट में कोडी गैपको ने शानदार फिनिश के साथ टीम के लिए तीसरा गोल दागा। इसके सिर्फ 7 मिनट बाद उन्होंने अपना दूसरा गोल दागते हुए नीदरलैंड्स की लीड को 4-0 कर दिया। स्वीडन के लिए मैच का पहला गोल 59वें मिनट में आया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंथनी एलंगा ने शानदार गोल करते हुए अंतर को कम करने का प्रयास किया। 89वें मिनट में क्राइसेंसियो समरविले ने शानदार गोल कर टीम की जीत पर मोहर लगा दी। 5-1 की धमाकेदार जीत के साथ ही नीदरलैंड्स के अब 2 मुकाबलों में 4 पॉइंट्स हो गए हैं, वहीं स्वीडन की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है।
2: प्रोवाइडिंग द एंगल एंड द क्रॉस इज देयर एंड प्रॉबी इज देयर अगेन। व्हाट अ डे ही इज हैविंग इन ह्यूस्टन। ऑन टू समरविल। 2-2 गेम्स फॉर क्राइसेंसियो समरविल। 5 गोल्स टू गो।
0: विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
3: और अब बात हॉकी की। भारत ने महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। सुनते हैं करिश्मा की एक रिपोर्ट।
4: FIH Hockey Women's Nations Cup champions for 2026. They have beaten New Zealand 2-0. Jubilation in the dugout for India and on field and among their fans in the crowd here at Harbour. For New Zealand, it just wasn't their night. Take nothing away from this team. They are so well coached.
5: रविवार को फाइनल मैच की शुरुआत में मेजबान टीम का बॉल पर ज्यादा कब्जा रहा और वे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मेहमान टीम ने पहला बड़ा मौका तब बनाया जब नवनीत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। उन्होंने 4th मिनट में एक जबरदस्त स्ट्राइक के साथ इस सेट पीस से गोल किया और भारत को बढ़त

0: भारत ने ट्रांजिशन में शानदार खेल दिखाया और अपनी ऊर्जा से न्यूजीलैंड के डिफेंस के लिए कई मुश्किलें खड़ी की। उन्होंने पहले क्वार्टर में मिले 5 पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी बढ़त बनाई। 15वें मिनट में सुनीलिता टोपे ने दीपिका के तेज शॉट को दिशा देकर स्कोर दोगुना कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अनुशासित खेल जारी रखा, जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी लय हासिल कर वापसी की कोशिश की। मेहमान टीम को भी अंतर कम करने के कुछ मौके मिले, लेकिन कोई भी टीम दोबारा गोल नहीं कर सकी, जिससे हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार रही। तीसरे क्वार्टर में भारत ने मजबूती बनाए रखी और जबरदस्त डिफेंस का।
1: और अब बात बॉक्सिंग की। भारत ने चेक गणराज्य में आयोजित 56वें ग्रां प्री उस्तीनाद लाबेम बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते।
2: महिला टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 5 में से 4 मुक्केबाजों ने स्वर्ण जबकि 1 ने रजत पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, 54 किलोग्राम में मौजूदा एशियन चैंपियन प्रीति पवार, 51 किलोग्राम में साक्षी और 60 किलोग्राम में प्रिया ने अपने अपने फाइनल में सर्वसम्मति से जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 65 किलोग्राम में परवीन ने रजत पदक हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इटली की मेलिसा जेमिनी को 5-0 से हराया। प्रीति ने 54 किलोग्राम टाइटल मुकाबले में फ्रांस की जेसा मार्सेल को इसी अंतर से हराया। साक्षी ने 51 किलोग्राम फाइनल में फ्रांस की मेसून बोरेगा के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने के लिए चेक रिपब्लिक की बारबोरा मैक्सोवा को 5-0 से शिकस्त दी। भारतीय पुरुष टीम ने भी 4 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें जादूमणि सिंह मांडेन, बाम, सचिन, अंकुश और नरेंद्र शामिल रहे। जादूमणि ने 55 किलोग्राम फाइनल में इंग्लैंड के अब्दुल बर्टन को 4-1 से हराया। सचिन ने हंगरी के वेरेस रोहलैंड को और अंकुश ने चेक गणराज्य के फ्लोरियन डैनियल पर 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की। नरेंद्र ने हैवी वेट फाइनल में आर्मेनिया के डेविड चालियोन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज की। 65 किलोग्राम वर्ग में आदित्य प्रताप यादव और 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पुखारिया को अपने अपने फाइनल में करीबी हार के बाद रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। 70 किलोग्राम वर्ग में सुमित कुंडू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने लगातार तीसरे साल पुरुषों का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप में भारत ने तीनों कैटेगरी में पदक जीते। और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी

0: संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2 स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे।

0: एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच

0: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी,

कराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।